0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: 7:20 on this 8th of October, and we woke up this Thursday morning with some really sad, devastating news that veteran actor Nana Patekar is sadly no more. He's passed away at the age of 75. And you know, when somebody of the stature of Nana Patekar, itne bade ke varishth actor jo hai, when he kind of passes away, it's like a huge tree that's kind of fallen, right? And you're forced to think of all the wonderful, wonderful work that they have left us with. You know, ek Gaman naam ki film aayi thi. I just figured out that that is his, what is that, that was his first film, and not Parinda. Parinda was, you know, the film that got him to mainstream success. Lekin Farooq Sheikh Smita Patil ki ek Muzaffar Ali film thi called Gaman, jisse unhone apna debut kiya tha. And then, you know, of course, who can forget Parinda, जिसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर का पूरा मतलब सीन स्टील ही कर लिया नाना पाटेकर ने. ही काइंड ऑफ अनाउंस्ड हिज अराइवल इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड. उसके बाद ही डिड फिल्म्स लाइक क्रांतिवीर एंड यू नो डायरेक्टेड अ फिल्म कॉल्ड प्रहार, जो कि उस टाइम पे भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई थी, बिकॉज ही आस्क माधुरी दीक्षित टू नॉट वेयर एनी मेकअप एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग हर टू से नहीं यार, हाउ कैन, बट शी डिड इट बिकॉज दैट्स द स्टैचर ऑफ नाना पाटेकर. उन्होंने कहा तो उनके लिए माधुरी दीक्षित डिड दैट ऑल्सो. इमेजिन लाइक अ ग्रेट टॉप एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड अग्रीइंग टू नॉट वेयर मेकअप फॉर एन एंटायर फिल्म. एंड देन ऑफकोर्स यू कैन फॉरगेट वेलकम एंड ऑल दीज फिल्म्स दैट ही हैज डन. बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अ फिल्म कॉल्ड टैक्सी नंबर 911, जिसमें वो जॉन इब्राहिम के ऑपोजिट थे, एंड दैट वॉज ऑल्सो लाइक अ मेमोरेबल फिल्म. राइट, चलो सुनते हैं उस फिल्म का एक गाना. यस, के विद एक नजर में भी. From all of us at Big 106.2, and I'm sure from you too, Nana Patekar, thank you for the entertainment.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए। पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
4: लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट बिजनेस। यू नेवर रियली नो हाउ फार इट कैन टेक यू। टुडे इट माइट बी अ लाइसेंस, टुमारो एन ऑफिस, देन सडनली यू नीड मोर वीजास, अ वेयरहाउस, मे बी इवन इंडस्ट्रियल लैंड। सो स्टार्ट somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
5: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
6: My nara hai mastana, my shok ye rindana.
7: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:28 on the clock and humidity kitni hai, that is the main question. It is 48%, yeah, down from around 80% over the past couple of days. So aaj chip chip factor kafi kam hai, so congratulations. 32 degrees Celsius right now, winds blowing at 13 kilometers per hour, highs of 38, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: Ek baar jo maine commitment kar di, uske baad to main apne aap ki bhi nahi sunta.
5: Oh yeah.
0: Ye hai Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: एंड सुबह सवेरे कुछ चीजों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. जुल्फी विद मी ऑन द फोन लाइन, इनका जो रिएक्शन वही हर किसी का है कि यार ये जो सुन रहे हैं ये सही है कि गलत है. बट आई हैव काइंड ऑफ वेरीफाइड इट नाउ सेवरल सोर्सेज. आई एम स्टिल एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ. आई एम होपिंग आई एम स्टिल इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि हमें रीवेरीफाई वेरीफाई हजार बार करना पड़ता है कि सही है कि अफवाह है. बट या नाउ इवन द लोकल पेपर्स हियर इन द यूएई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑब्चुरी. सो जुल्फी, इट्स नॉट रियली द आइडियल स्टार्ट टू द डे. नाना पाटेकर इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अमंगस्ट अस एनीमोर.
1: करेक्ट. मैं तो वही सर शॉक में था. आपने जब बोला तो मैंने कहा अरे फिर तो कंफर्म हो गया ना. सुबह तो मुझे यही था कि वो सोशल मीडिया में तो लोग रोज किसी ना किसी को मार रहे हैं.
0: हाँ, या. सो आई वाज आल्सो होपिंग. पहले तो आके मलते हुए देखा कि ये क्या है, फिर मैंने लाइक नहीं, ये तो ऐसे ही रोज आता रहता है कुछ ना कुछ. बट
1: मेरा भी यही था. सुबह मैं आधी नींद में था, मैंने कहा बकवास हो गई.
0: करेक्ट. But yeah, nahi, it's verified news now. You'll find it on all jo reliable publications hain, responsible wale, unhone bhi sab dal diya hai. So it's happened, unfortunately. But but you know what? Kya kehte hain? Like they say, the show must go on. And when somebody like Nana actually leaves, he leaves behind like their entire legacy. And kehte hain na ki pura entire ek potha bhar ke inhone jo kaam kiya hai, isko dekhte, you know, kafi saal nikal jayenge. It's so much of work that he's left behind. Some that is well known, you know, other parts for actors like Nana Patekar who've got this really nice lineage of stage behind them. उन्होंने ऐसी फिल्में की हैं जैसे कि नट सम्राट वगैरह, जो कि काफ़ी लोगों ने नहीं देखी है. नाउ दिल बी काइंड ऑफ रीडिस्कवरिंग और डिस्कवरिंग दोज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मार्वलिंग एट द ह्यूज टैलेंट द नाना पाटेकर वॉज. लेकिन जुल्फी, आपकी एक बहुत ही पर्सनल कहानी है व्हेन इट कम्स टू नाना पाटेकर. या आई मीन इट्स लाइक एन आदत. हाँ,
1: मैं और मेरा एक दोस्त है सर, वो हमारा एक वो है. जब जिंदगी में परेशानी ज्यादा होती है तो नाना पाटेकर की फिल्में देखते हैं.
0: ये
1: ऐसा लग रहा था ना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिंदगी में, तो फिर नाना पाटेकर ये शुरू होते हैं. प्रहार
0: यार,
1: यक्रोश, इस तरह की फिल्में जो है ना फिर वो मोटिवेशन देती हैं.
0: आई हैव नोन लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट तरीके टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर. मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व यू नो वॉचिंग अ रोम कॉम या यू नो DDLJ टाइप की फिल्में देखते हैं कि हम लोग ना स्ट्रेस से बचने के लिए स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में जाना पसंद करेंगे. लेकिन आप नाना पाटेकर की फिल्में क्यों? इट्स लाइक अ रिवर्स साइकोलॉजी प्रोमैक्स. हाँ, ये क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या होता है उससे?
1: है ना, वो जगा देता है.
0: जगा देता है.
1: आप तो वैसे भी जाके जो है ना सारी दुनिया से लड़ लेना है.
0: हाँ, और जितना स्ट्रेस उनकी लाइफ में जितना हो रहा है स्ट्रेस उसके उनके कैरेक्टर को, उससे तो एटलीस्ट कम ही स्ट्रेस है. तो शायद कि अपने से बुरे सिचुएशन को देख के अच्छा लगता होगा आदमी, आपको अच्छा लगता होगा. बट या आई मीन
1: आपने मेंशन किया मूवी, तो उसमें आप एक मूवी तो भूल गए सर. हाँ, अब तक छप्पन.
0: यस. हु कैन फॉरगेट अब तक छप्पन.
1: खतरनाक सिनेमा.
0: या एंड आई थिंक उसने डिफाइन कर दिया ये जो यू नो एक पुलिस जॉनर, जो कि ये एनकाउंटर किलिंग वाला जो ये जॉनर था, द एंटायर काइंड ऑफ वाज द प्लेबुक ऑफ दैट. एंड लाइक नाना पाटेकर से अच्छा कौन वो रोल कर सकता था?
1: सारी देयर आर अ लॉट ऑफ पुलिस मूवीज, बट वो एक रियल लाइफ नजर आता उसको देख के यार ये दिस इज अ रियल कॉप.
0: Right, and I mean, who better than Nana Patekar to play a Marathi cop, right? I mean, so he's given like this entire playbook to all the other actors that followed him. Ke bhai, agar karo, if you want to play a Mumbaikar, you know, encounter specialist, then this is how you do it, right? So, usse pehle ke jitne role the, uske baad ke sab unhone khariji kar di uske baad. Right? So, that was the power of Nana Patekar. I mean, how can a villain actually steal the show from lead actors like Anil Kapoor and Jackie Shroff? He taught the world, I think, in Parinda, ke please look at the villain as well. Ke the villain can also be like a, doesn't have to be a Mogambo. Huh? It doesn't have to be an out of the ordinary, kuch wo German inspired Mogambo nahi hona chahiye. It could be like a very real character also, right?
1: Correct.
0: So many contributions, and I'm sure all through the day today and in the years to come, we will be remembering Nana Patekar. Zulfi, thank you very much for calling in and sharing that story. In kitare, agar aapki bhi koi personal, you know, connection hai to Nana Patekar and his films, yeah, that's all we can do, you know, in our homage to the great actor who's sadly passed away. Give me a call, 800-1062. Let me know what you're feeling.
2: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: जिंदा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक,
1: गुड मॉर्निंग, 8:07।
2: बॉलीवुड।

वैसे मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिस सबके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 8:18 on this Thursday. So there's something very interesting that is happening here in Dubai. And there's a redesigning of more than 2,000 street signs with the color coding that's going to happen very, very soon. 2,000 street signs to redesign kiya ja raha hai, interesting banaya ja raha hai. ये नहीं कि यार सारे के सारे रोड साइंस जो है मोस्ट ऑफ देम दे लुक एग्जैक्टली द सेम दे फील एग्जैक्टली द सेम क्योंकि अलग अलग एरियाज है अलग अलग एरियाज के अलग अलग अपने अपने यू नो वो हैं वातावरण है अलग अलग मॉडर्न वातावरण डिफरेंट लुक एंड फील टू ईच ऑफ द एरियाज हियर इन दुबई राइट सो वाई शुड द साइन बोर्ड्स बी एनी डिफरेंट सो प्रॉपर कलर कोडिंग होने वाली है एंड द फर्स्ट फेज कवर्स 5 एरियाज एंड द आइडिया इज टू मेक नेविगेशन क्लियरर एंड फास्टर फॉर मोटरिस्ट नाउ हियर इज व्हाट माय क्वेश्चन इज के डज एनीबडी लुक एट you know road signs

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It is 8:52 on the clock, and I've got Shreya with me on the phone line. Good morning, Shreya. How are you doing?
2: Good morning. I'm doing well. How are you?
1: Very, very good. Yeah, जब से मैंने आपको profession सुना है, मैं थोड़ा सा numb हो गया हूँ. Did you get the joke? Did you get the joke? Because Shreya is actually an anesthetist. Oh my God, yeah.
2: Yes.
1: I have no idea how to react to that. Ever since you've told me, I'm just kind of thinking of so many different things. You are like Hindi film ke villain to kya khukhar honge jo aapse log darte honge, hai?
2: I think you're the first one who has reacted to my profession like this for the first time. नहीं तो हर कोई अगर पूछा तो बोल रहा है कि anesthetist क्या करते हैं exactly.
1: अरे नहीं यार, मतलब आप सबसे important काम भी करते हो और आप सबसे डरावना काम भी करते हो. So you, before you get into surgery, you have to meet you. और फिर आपके पास पहले जाना भी तो पड़ता है टेस्ट करने के लिए कि आप देखते हो कि BP सही है कि नहीं है, आप फिट हो के नहीं हो. आप जितनी बातें बोलते हो ना और कोई नहीं हमारे वजन से लेके हमारे हार्ट कंडीशन से लेके BP सबके बारे में कमेंट करने का हक सिर्फ एक एनेस्थेटिस्ट को है.
2: Correct.
1: है ना? वेरी गुड, वेरी गुड. सो श्रेया, एक बात सच सच बताना. सिंस यू आर एन एनेस्थेटिस्ट, आप ज्यादा पैसे कमाते हो या डेंटिस्ट? टेल मी द ट्रूथ. ओके,
2: एक्चुअली हम ही ज्यादा कमाते
1: हैं. यस, बोल दिया भाई, फुल पॉइंट फॉर ऑनेस्टी. अब बताओ, MBBS में जब वो एक मुश्किल घड़ी आती है, जब चूज करना होता है कि प्रोफेशन, आप कौन से स्पेशलिटी चूज करोगे, तो आपने भी इसीलिए चूज किया ना?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.
1: बताओ श्रेया, बहुत अच्छे जा रहे हो, ऑनेस्टी के अच्छे मार्क्स में आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे जा रहे हो. टेल मी द ट्रूथ. पापा ने पूछा, बेटा सबसे ज्यादा पैसे सबसे ज्यादा कहाँ छापोगे? पापा एनेस्थेटिस्ट, बेटा वही बनो. इतना क्रिटिकल काम है आपका, इतना बारीकी इसमें इन्वॉल्व है, एंड सच अ स्पेशलिटी काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू काइंड ऑफ डिजर्व ऑल द पैसा दैट यू आर छापोइंग यार. श्रेया, नाउ दैट वी आर लाइक पास्ट ऑल ऑफ दैट, यू नो द रीजन आई हैव कॉल्ड यू इज दैट यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग एन ऑल एक्सपेंसिस पेड ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम टू जर्मनी. सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा हुआ है एनेस्थेटिस्ट श्रेया जी, आपके और जर्मनी के बीच में. ओके, सो आपको एक बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना है. ओके, इफ यू डू दिस देन यू गो टू जर्मनी, इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके
2: ओके
1: श्रेया, आर यू रेडी? यू हैव टू स्पेल डुसेलडॉर्फ.
2: डुसेलडॉर्फ,
1: या डुसेलडॉर्फ इज अ सिटी इन जर्मनी which we might be going to in the big check-in. So, spell Dusseldorf.
2: Okay, wait. D-U-S-S-E-L-D-O-R-F. D-O-R-F.
1: Shreya?
2: Yeah?
1: Ek baat batao.
2: Ji.
1: मैं मजाक कर रहा था, अगर आपने गलत जवाब दे दिया होता तब भी आप जर्मनी जा रहे होते, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. My God! अरे, who spells Dusseldorf यार, मतलब your teacher will be so proud of you. I did not care if you know the answer or not. मुझे लग रहा था आप नहीं दे पाओगे, लेकिन Dusseldorf, क्या बात है. MBBS Pro Max, congratulations, you are going to Germany in the big check-in.
2: Thank you so much. Oh my God, thank you so much.
1: क्या बात है यार, क्या बात है. Anesthesia के साथ deal करते करते there is nothing that can make that can shock or make Shreya numb. Is that what it is?
2: Oh my God.
1: कैसा लग रहा है इस वक्त यार, बताओ, tell us.
2: I think I'm feeling numb right now.
1: Yeah, it will take a bit of time for this anesthesia to wear off and for you to come to your senses. Yeah,
2: Thank you so much.
1: How badly did you need this vacation, and how much does it mean to you? Who's the first person that you're going to call today?
2: Call? My husband is here.
1: He's there with you?
2: So, yeah.
1: Achha, so, wo bhi kuch numb lag rahe hai, ya is he looking happy about this? Ki he'll have to spend like 3 to 4 days without you?
2: No, I think he's extremely happy that that I got that chance of going, because going to Germany is like a dream come true, to be very honest.
1: And it's
2: like
1: on everybody's top of bucket list when it comes to travel, correct?
2: Yes, definitely. I mean, like, never go on to those places, I always thought of going to those places, but then, yeah. So yes, thank you so much for this opportunity.
1: Many congratulations.
2: Thank you so much.
1: And thank you so much for taking part in this contest. And there were so many steps and you cleared all of those steps. And finally, ab aur kuch mehnat nahi karna hai. You don't have to like mug up any more spellings, etc. By the way, how do you know the spelling of Dusseldorf?
2: To be very honest, I just took a guess. Dusseldorf ka matlab D-U-S-S ho sakta hai, D-O-U-C-H-E-L ho sakta hai. So I was like...
1: Amazing. That is just incredible. Congratulations.
2: We are so happy
1: for you. And you're going to have a trip of a lifetime. Ye hamari guarantee hai. Aur trip mein you'll be seeing so many sights and sounds of Germany, you know, soaking in all that wonderful culture out there. And saath mein you'll be making some friends. And that friendship is going to last you for a lifetime. Hamari guarantee hai, because you know so many of those WhatsApp groups jo hamare hote hain, they are still active from years ago and we still do meetups and all of that, so it's going to be just the most incredible time. So once again, congratulations from all of us
2: here at
1: Big 106.2. That is Shreya and she's heading out for an all expenses paid trip to Germany. The latest season of Check-In, we are heading out to Germany, and many thanks to our presenting sponsors Daniel Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsor Ford, and Sharaf DG and travel partner AFC Holidays.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umalkwain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit uaqftz.com.
3: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. The Big Mix miss kiya gaya.
4: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
5: अच्छा मुझे बताओ सार्थक, आपको फिर स्टेकेशन पे जाने की जरूरत पड़ती है?
6: यस, वेरी इम्पोर्टेंट।
5: अभी आप कहाँ पर हो?
6: अभी मैं काम पर हूँ।
5: काम पर ही हो, होटल पे ही हो?
6: हाँ जी।
5: फिर आपकी होटल टू होटल करवा दें वापसी।
6: कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे?
5: हम कहाँ भेज रहे हैं, अरे आपने किसके लिए पार्टिसिपेट किया था? बिग चेक इन टू जर्मनी के लिए किया था ना?
6: मुझे थोड़ा एकदम हम्बल सा साउंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ एज मैं एक्साइटमेंट दिखा दूंगा तो फिर
5: नॉट एट ऑल। यू शुड बी एक्साइटेड, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर बिग ट्रैक इनटू जर्मनी।
6: थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड,
5: ये सोच रही हूँ कि आप स्टेकेशन इतने आपने एंजॉय कर लिए होंगे तो जर्मनी जाके आप क्या क्या जज करने वाले हो, मुझे पहले बता दो आप।
6: जर्मनी जाके जज नहीं, जर्मनी जाके ऑब्वियसली आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख। आई टोल्ड सेड आल्सो अबाउट दिस एंड आई थिंक आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख स्टेडियम फॉर श्योर। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आज ही मेरे को बोला था कि थोड़ा परमिशन चाहिए होगी, तो मैंने कहा जरा मैं बात करके आता हूँ अपने डायरेक्टर से।
5: So that's how Sarthak manifested for Big Check Into.
3: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Good morning, the time right now is 9:26 and let's take a look at the roads out there. Sabse pehle, the usual hotspots pe chalte hain, 311-11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries will find the usual 6 to 8 minutes ka traffic is easing up. Also 88 par, there's 5-6 minute ki der only going towards the safe zone. And 66 pe abhi bhi kaafi traffic hai, and this is from the junction of 44 going all the way to Al Jadaf, a bit beyond towards E11, and then 44 also going towards Russell Core. From Nadul Hamar, you'll find a bit of congestion. Also getting south towards Barsha South, and this is Alkuz Fort se traffic shuru ho jata hai at 44, which is Al Khail Road, and the usual northbound traffic at Dubai Marina going towards Barsha Heights on Sheikh Zayed Road. Aaj subah jo traffic Jabal Ali se lekar Parks and Resorts tak tha, that has eased out a bit, but you'll still find a 2 to 3 minute delay heading south.
1: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ लवेरिया, कौन सी फिल्म में ये वाला गाना था दैट नाना पाटेकर टीचेस टू शाहरुख खान? अगर आपको फिल्म का नाम पता है, इफ यू आर बिग नाना पाटेकर शाहरुख खान फैन, देन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062, दैट्स अ व्हाट्सएप नंबर 0543091062 पर सही जवाब, स्पेस अपना नाम टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम? नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: It is 9:48 on the clock and बहुत मजा आने वाला है because Shravista with me on the phone line. Good morning, Shravista.
2: Good morning. How are you, sir?
1: Very, very good. And देखो क्या है ना कि problem ये है कि आप जैसे लोग जो हैं वो आदतें खराब करते हो, है ना? उसके बाद जब आदतें खराब हो जाती हैं, उसके बाद फिर कंप्लेन करते हो कि यार आपकी आदतें क्यों खराब हो गई. ये इट इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक श्रविस्ता हु डू ऑल दीज काइंड ऑफ रोमांटिक थिंग्स. प्लीज टेल एवरीबॉडी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. श्रविस्ता, आपने क्या किया आज सुबह और क्या कर रहे हैं?
2: So I'm in a career break at the moment, so I like to drop my husband to work in the morning and pick him up in the evening.
1: क्या बात है. और जब मैंने कहा कि ये क्या शोफर सर्विस शुरू की है तो आपने कहा गर्मी ज्यादा है और क्या?
2: I want a career break. ठीक है, I have the time, so why not?
1: और मैं उन्हें ना मैं देख नहीं सकती कि मेरा बेचारा हस्बैंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गर्मी में धक्के खाए. क्या बात है यार श्रविता, इतना रोमांस.
2: See, the thing is, his office is in Jeddah. So, वहाँ से metro station is a little far. So, if he misses his office bus, he'll have to walk या फिर take a cab.
1: आप कुछ भी बोल लो right now. You cannot stop people from being jealous. You cannot. एक तो गर्मी ऊपर से आप जला रहे हो लोगों को. यार क्या कर रहे हो श्रविस्ता, यार सुधर जाओ थोड़ा प्लीज. मार्केट खराब कर रहे हो आप.
2: खराब करने की जगह इट कुड बी दैट अदर पीपल कैन टेक इट एज एन इंस्पिरेशन.
1: ओके, वेरी गुड. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फिंगर्स क्रॉस कैसा हो. हालांकि मुझे लग नहीं रहा है यार, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं ऐसे लाइक क्या हो क्या रहा है. इट्स लाइक कंप्लीटली इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ. बट या वेलकम टू द शो. एंड कितने साल हो गए आपकी शादी को बाय द वे?
2: 4 years.
1: 4 साल शादी. उससे पहले कोई डेट वेट कर रहे थे या क्या?
2: Yeah, we dated for another 4 years.
1: भाई साहब, लव मैरिज 4 साल की डेटिंग, उसके बाद की लव मैरिज. होता है यूजुअली कि मतलब वो सारा लव जो है वो निकल जाता है, मैरिज बच जाता है, लेकिन 4 साल के बाद भी. अरे यार श्रविस्ता, दिस इज लाइक आर यू द कपल ऑफ द यूएई? हाँ, यू शुड बी नॉमिनेटेड फॉर लाइक द बेस्ट कपल इन द यूएई, समथिंग लाइक दैट. अमेजिंग.
2: थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.
1: अच्छा तो चलो, लास्ट टाइम you should be please convey our congratulations to your husband also when he's back from work. Aisa to nahi ki usko pick up karne jaoge?
2: Sham ko to jaoge.
1: Oh my god, this just keeps getting more unbelievable. Isse pehle ki main faint ho jaun, let me just get down to business. Last time maine aapko ek gana sunaya tha, dialogue sunaya tha, it was this one. Sardi haseena malaria hua. Shravista and Mr. Shravista ko laveria hua for sure pichle 8 saal se. Batao film ka naam kya hai?
2: Raju ban gaya gentleman
1: is absolutely correct. Yeah, congratulations, aapne jeete hain 2 open movie tickets. Yaar, I have a challenge for you.
2: Sure.
1: Ye 2 ticket hain. Go with somebody who is not your husband, please.
2: That's very difficult.
1: I'm just joking यार. चलो congratulations, enjoy yourself at the movies. And मैं क्या ही कहूँ यार, आपने एक बहुत ही incredible problem खड़ी कर दी है बाकी सारे सुनने वालों पे, लेकिन मजा आ गया आपसे बात करके. Enjoy yourself, take care.
2: Same here. Have a nice day, sir.
1: Take care. श्रविस्ता हमारी आज की विनर हैं. एंड आइडियल कपल का अगर किसी को टाइटल जाता है तो श्रविस्ता या राजू बन गया जेंटलमैन वाज द करेक्ट आंसर. इसमें नाना पाटेकर वाज गिविंग एडवाइस टू शाहरुख खान, विच इज द मोस्ट थुरंदर परफॉर्मेंस ऑफ नाना पाटेकर. आई एम गोना आस्क यू अ पोल क्वेश्चन. 106.2 बिग एफएम.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। दिल भर तू दिल

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: 9 बजकर रनी 10 बजकर 10 मिनट एंड इट इज द एरा ऑफ द सोलो प्रेन्योर लाइक सैम ऑल्टमैन सेड के मतलब बस वन पर्सन कंपनी के दिन ज्यादा दूर नहीं है. सो इट्स एक तो एआई की मदद से इट सीम्स सो एक्सेसिबल यू नो हैविंग दैट ग्रेट आइडिया एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू अ रियलिटी इनटू अ बिजनेस. बट एवरी बिग बिजनेस स्टार्ट्स विद अ स्मॉल आइडिया. एज दैट बिजनेस ग्रोज इट नीड्स टू ग्रो टू. पहले आपको चाहिए बिजनेस लाइसेंस टू गेट स्टार्टेड, देन ऑफिस स्पेस टू ऑपरेट. एज द बिजनेस ग्रोज यू मे नीड अ warehouse, and then when it's really time to scale you may need industrial land as well. Now what if you could find all of that under one ecosystem? That's the UAQ free trade zone, the Umal Quain free trade zone. More than a business license, ye a complete ecosystem hai designed to help businesses start, operate and scale in the UAE. Affordable business licensing solutions se lekar offices, warehouses, industrial land. UAQ Free Trade Zone supports your business as it grows with corporate tax benefits. One ecosystem, different stages of growth. The Umal Quain Free Trade Zone, the UAQ Free Trade Zone, built for businesses that are ready to grow.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
3: अच्छा मुझे बताओ सर, तक आपको फिर स्टेकेशन पे जाने की जरूरत पड़ती है?
4: यस, वेरी इम्पोर्टेंट।
3: अभी आप कहाँ पर हो?
4: अभी मैं काम पर हूँ।
3: काम पर ही हो, होटल में ही हो?
4: हाँ जी।
3: फिर आपकी होटल टू होटल करवा दें वापसी?
4: कहाँ भेज रहे हैं आप मुझे?
3: हम कहाँ भेज रहे हैं, अरे आपने किसके लिए पार्टिसिपेट किया था? बिग चेक इन टू जर्मनी के लिए किया था ना?
4: मुझे थोड़ा एकदम हम्बल सा साउंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ मैं एक्साइटमेंट दिखा दूंगा तो फिर
3: क्या पता। नॉट एट ऑल, यू शुड बी एक्साइटेड, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर बिग ट्रैक इनटू जर्मनी।
4: थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड,
3: दिस इज सो गुड। सोच रही हूं कि आप स्टेकेशन इतने आपने एंजॉय कर लिए होंगे, तो जर्मनी जाके आप क्या क्या जज करने वाले हो मुझे पहले बता दो। आप
4: जर्मनी जाके जज नहीं, जर्मनी जाके ऑब्वियसली आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख। आई टोल्ड सेड आल्सो अबाउट दिस एंड आई थिंक आई विल गो टू बायर्न म्यूनिख स्टेडियम फॉर श्योर। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है आज ही। मेरे को बोला था कि थोड़ा परमिशन चाहिए होगी, तो मैंने कहा जरा मैं बात करके आता हूँ अपने डायरेक्टर से।
3: So that's how Sarthak manifested for Big Check Into.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉलीवुड लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: सरप्राइजिंगली ह्यूमिडिटी काफी कम है, कल से 34% विद 38 डिग्री टेम्परेचर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2। Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Chase Banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड भाई वीकेंड पे घूमी घूमी की बात हो और मैं मना कर दूँ डिस्पोजेबल. Weekend is packed. Miracle Garden, Dubai Parks are back for the season. Adventure Timing is taking over the Museum of Candy and there are food festivals also coming up. Tasting menus bhi honge jahan par ab itna kha liya hai, ghoom liya hai. Toh free fitness events bhi hai later in this month. Lekin having said that, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे एडवेंचरस दुबई मिरेकल गार्डन रीओपन हो गया है फॉर इट्स 15th सीजन विद ओवर 150 मिलियन फ्लावर्स. ओह गॉड, मतलब आई एब्सोल्युटली लव फ्लावर्स. इज वन थिंग ना जो मैं हल्का बहुत थोड़ा सा मिस करती हूँ, दैट्स एक्चुअली फ्लावर्स. आई लव इट यार. लड़कियाँ और उनको फ्लावर्स पसंद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: to you by Zulekha Hospital and Papa John's. Listen to her every day.
1: Mugembo! खुश हुआ
2: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
3: मॉम की जान।
2: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
3: एप्पल।
2: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
3: पालक पनीर।
2: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Heavy traffic on E11 from Ood Mehta Sheikh Rashid Road Junction towards Defence Roundabout. यहाँ पर आपको काफी कंजेशन मिल जाएगा। उसके अलावा there are slow downs near Al Safa and Al Manara. Al Khail Road पर there's busy from Medan towards Dubai Hills. E311 पर from Sharjah towards Mirdiv there's also congestion around International City and Global Village. उसके अलावा कहीं और फंसे हो, let me know, call करके 800-1062 पर.
5: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
0: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: जाने।
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड प्लानिंग हो रही है वीकेंड की. एंड जब आप नैना दुबई आते हो ना यार, तब बन करता सब कुछ घूम लो. बट फिर एनी लाइक यार मैं यही हूँ, मैं आराम से घूम लूंगा यार. तभी इसीलिए मेरा मिरेकल गार्डन मिस हो गया था लास्ट टाइम, बट टुडे वापस से रीओपन हो गया. इट्स द 15th सीजन टुडे एंड यूएई रेजिडेंट्स के लिए 70 दिरहम्स फॉर एडल्ट्स, 50 दिरहम्स फॉर चिल्ड्रन द एंट्री फीस. जनरल एडमिशन के लिए इट्स 100 दिरहम्स फॉर एडल्ट्स, 80 दिरहम्स फॉर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन अंडर 3 इट्स फ्री फॉर देम. एंड जस्ट नॉट दैट, मिरेकल गार्डन प्लस बटरफ्लाई गार्डन का कॉम्बो ऑफर भी है. दैट्स 140 दिरहम्स, वैट ऑफ कोर्स एडिशनल. लेकिन बता रही हूँ, मिरेकल गार्डन हुआ हो इस ये वाली गली बेटर है.
3: इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री.
2: फूल देने वाले का वेट करोगे तो वेट करते रह जाओगे, फूलों में जरा होकर आओ. कीप इट लॉक टू बिग 106.2 एंड टेल मोर अबाउट हाउ टू प्लान दिस वीकेंड.

0: ऐसी भी है मुझे खुद का पता था यार मगर हूँ तो हूँ
1: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood

0: मस्त माहौल तो बन चुका है विद दिस बिग इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज कमिंग अप.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ दैट इज द फोर्थ कॉरिडोर. दुबई हैज अप्रूव्ड द न्यू फोर्थ कॉरिडोर जो कि होने वाला है 80 किलोमीटर का 12 लेन हाईवे कनेक्टिंग शारजा दुबई एंड अबू धाबी. अभी जो रोड है दैट विल बी एबल टू हैंडल अप टू 24,000 व्हीकल्स एन आवर विद 72 ब्रिजेस एंड 17 टनल्स and is expected to cut the travel times between the key hubs more than 50%. मतलब अब आप शारजा दुबई अबू धाबी में जितना भी travel करते हो, कभी करते भी हो, अगर नहीं करते हो, दोस्तों से मिलने जाते हो, काम पर जाते हो, the travel time gonna cut to 50%. This will also connect directly to Al Maktoum International Airport and Etihad Rail ताकि हमारा travel ज़्यादा जल्दी हो जाए. एंड ऊपर से connectivity देख रहे हैं आप, अब बनो ना यार, अब ये जवानी है दीवानी का बनी. Coming up in few years, लेकिन तब तक जवानी बरकरार रहेगी यार. Keep it locked to Big 106.2.
1: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06।
1: Bollywood.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money too. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ. This is the Big Mix and आज कॉल जाने वाला है Big Check-In के विनर को, जिसकी सीट इस जर्मनी की फ्लाइट के लिए कंफर्म है. भाई दिन बन जाएगा ना, ऐसे थर्सडे को दोपहर में आपको अचानक से कॉल आ जाए कि हाँ हाँ आप ऑल एक्सपेंस पे ट्रिप के लिए रेडी हो. मैं कह रही हूँ ये आवाज ना निकली अगर दिल से. ट्रिप पे कोई और जा रहे है, मैं इतनी एक्साइटेड क्यों भाई. ट्रिप की बात सुनते ही, नाम सुनते ही मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन बिग चेक इन के लिए कौन जा रहा है, मैं और हूँ उसे कॉल जाने वाला है. कौन जाएगा, इतने दिनों से जिसके नाम रजिस्टर हो रहे थे उनमें से ही कोई है यार. इंकी पिंकी पोंकी करके देखो, क्या पता आपका गेस सही निकल आए. हु इज इट, करती हूँ उसे कॉल, सुनाती हूँ आपको साथ में. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
6: It's 38 degrees out there, but with humidity 39%. लेकिन जिसे भी कॉल जाने वाला है ना विनर को बिग चेक इन के, भाई उसके तो हाथ ठंडे बनने वाले एक्साइटमेंट से।
5: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
7: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
5: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
3: The Beat of Bollywood.
4: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड बिग चेक इन के लिए कॉल किया है हमने आज रितुल को. हाय रितुल.
5: हाय अवनी.
4: हाउ आर यू?
5: आई एम गुड. आई एम गुड.
4: क्या कर रहे थे आप?
5: आई वाज इन मिडल ऑफ प्रिपेयरिंग प्रपोजल एंड व्हेन आई गॉट द कॉल आई जस्ट शट डाउन माय लैपटॉप एंड गॉट आउट.
4: ओह, लेकिन एक और स्टॉप बन गया आपका. आपने लास्ट टाइम मुझे, आई मीन ऑफ कोर्स मैंने जब आपको कॉल किया था, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट?
5: आई वाज अ बिट टेकन, यू नो, टेकन बाय सरप्राइज. Because I never have received a call from an FM despite me being here for 20 years, so I was taken a bit back by surprise. Yeah.
4: मुझे जानना है, ऐसे होता ना कि कोई number lucky होता है. What is your lucky number?
5: My lucky number would be 7.
4: 7. Okay. Yeah. Okay. पर आज 8 तारीख है, लेकिन तब भी मैं आपको एक lucky news दे सकती हूँ क्योंकि I called you for big check-in to Germany. You remember? And even I'm surprised. I want what cards do you have because you are coming with us to big check-in to Germany.
5: That's great. That's great.
4: Did you expect it?
5: I honestly did not expect it.
4: But Ritul, I have to say this. I want your manifesting powers. What do you do?
5: I mean, one thing is to do good to others. Be good to yourself.
4: Ye to Ritul ab bas humble ho rahe. You're just being humble now.
5: Give to others what you want to receive. So, and be open when it's time to receive. That's my policy. And start giving value to others. That's all, you know, nothing too complicated.
4: Ritul being very humble now. Achha, main point par aati hu. Plan kya hai ab aapka? छुट्टी मिल जाएगी?
5: या छुट्टी मिलेगी तो वो आई हैव टू डिस्कस, बट या इट विल बी डन.
4: ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन द ट्रिप. नाउ सी यू ऑन दैट फ्लाइट.
5: सी यू अवनी एंड एवरीबॉडी एल्स. थैंक यू फॉर द कॉल.
4: थैंक यू सो मच.
5: बाय बाय.
4: बाय.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix. And अगर आप प्लान कर रहे हो टू टेक इतिहाद रेल बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी, आपको ध्यान रखना है बुकिंग टाइम का, बिकॉज फेयर्स आर नाउ फ्लेक्सिबल. मतलब पीक आवर हाई डिमांड पर ट्रेन्स कैन कॉस्ट अप टू 40 दिरहम्स मोर. कैसे? 11th अक्टूबर की अगर आप चेक करो 514 की ट्रेन, दैट इज लिस्टेड एट 149 दिरहम्स कंपेयर्ड विद द यूजुअल दैट वाज 109 दिरहम. कंफर्ट क्लास अगेन द सेम सर्विस 59 दिरहम की थी, तो ये बढ़ सकता है. अब आपको अगर वीकेंड पर जाना है, स्पेशली वीकेंड के टाइम पर ये कॉस्ट बढ़ रही है. अगर आप जाना चाहते हो दुबई अबू धाबी इतिहाद रेल पर, आपको एडवांस टिकट बुकिंग करवानी है ताकि आपको महंगी ना मिले. And all those long distance relationship वाले लोग, करो वही लगाओ दिल, खर्चे बढ़ जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से. पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कॉल करो, बताओ मुझे 800-1062 पे आपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैक्सिमम ट्रैवल के लिए कितने पैसे खर्चे हैं यार, बताओ मुझे. 800-1062 is the number. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Late Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। थर्सडे लंच टाइम का टाइम निकल चुका है, कयूंगा भी हो चुका होगा, लेकिन इट्स टाइम फॉर अस टू प्ले। यार हैप्पीनेस खाने से शुरू होती है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता है, लेकिन खाओ पियो ऐश करो के लिए आपको मुझे मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062। आई विल कॉल यू, खेलेंगे हम एक रैपिड फायर फूड गेम। लेट्स सी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और कितनी देर में आप बताते हो। नाम लेते जो क्रेविंग बोलती है ना खाने की, कि इसका नाम ले लिया तो अब तो भूख लगी गई है। सो ये गेम खेलने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं भाई, आपको बाद में तगड़ी भूख लगने वाली है। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
1: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events, creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ
3: आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
4: मॉम की जान।
3: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया। करते क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
4: एप्पल।
3: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
4: पालक पनीर।
3: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
6: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली
8: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: 37 degrees out there with 42% humidity, and इसी humidity की वजह से ये 37 जो है ना, ये 45 feel हो रहा है।
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ और मैंने आज कॉल किया है हुसैन को. हाय हुसैन.
3: हाय.
2: कैसे हैं आप?
3: ठीक अलहमदुलिल्लाह. आप कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया. क्या करते हैं आप हुसैन?
3: मैं स्टूडेंट हूँ.
2: आप स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो?
3: आई मीन जस्ट रिसेंटली यू नो जॉइन किया यूनी, तो बस बीबीए के लिए.
2: यार ये बढ़िया है. मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होती और फिर मैं बाहर आई होती पढ़ाई करने के लिए, कितना मुश्किल होता ना स्केल ऑफ 1 to 10, टेल मी.
3: आई थिंक 8, बिकॉज़ देखो पहले तो हम लोगों का 12 इयर्स होते हैं, फिर कंप्लीट करो, फिर अगेन वापस पढ़ाई करो, ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है ना.
2: अच्छा, आपको लग रहा है कि 12th के पास बस खत्म कर दो, उसके बाद नहीं होनी चाहिए पढ़ाई. मेरा पूछने का मतलब था कि घर से जब दूर मम्मा वापस से दूर रहते हैं 12th के बाद ही, तो कैसा फील होता है?
3: वो मुश्किल है यार. लेकिन
2: खाने की याद आती होगी ना घर की?
3: बहुत ज्यादा.
2: बहुत ज्यादा. तभी आप खाओ पियो ऐश करो खेलने आ गए हो. ठीक है. ओके हुसैन, मैं आपको दो डिशेस दूंगी, आपको फटाफट बताना है, चूज करना है कि आप दोनों में से कौन सी खानी पसंद करोगे. ठीक है. व्हाट वुड यू चूज, बटर चिकन प्लस गार्लिक नान या फिर चिकन टिक्का मसाला?
3: बटर चिकन प्लस गार्लिक नान.
2: ओके. बटर चिकन प्लस गार्लिक नान या फिर चिकन बिरयानी?
3: बटर चिकन.
2: बटर चिकन या मटन रोगन जोश?
3: बटर चिकन.
2: बटर चिकन या चिकन कोरमा?
3: चिकन कोरमा.
2: चिकन कोरमा या फिर कोरियन फ्राइड चिकन?
3: चिकन कोरमा.
2: चिकन कोरमा या अमृतसरी फिश?
3: चिकन कोरमा.
2: चिकन कोरमा या फिर मटन बिरयानी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर ट्रफल चिकन पास्ता?
3: पास्ता.
2: पास्ता. पास्ता या फिर स्टीक प्लस मैश पोटैटोस?
3: नहीं, पास्ता.
2: पास्ता. पास्ता या फिर अगेन लास्ट मटन बिरयानी?
3: पास्ता.
2: पास्ता. ये बात हुई ना, ये अब पता लगा ना जेंजी है. पिज्जा पास्ता बर्गर के ऊपर कुछ नहीं आता है ना.
3: yeah.
2: अच्छा, आपने लंच के लिए खाया क्या था भाई? दबे
3: मैं वैसे बिरयानी खाया था.
2: तभी आपने बिरयानी तभी नहीं चूज करी कि अब खा लिए बिरयानी, अब मैं पास्ता चूज करूंगा. हुसैन, एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे इजी डिश क्या है बनाने के लिए, खुद के लिए?
3: मेरे लिए सैंडविच.
2: सैंडविच. मैं भी हर दूसरे दिन से दिन सैंडविच खा रही होती हूँ. थैंक यू सो मच हुसैन फॉर मैसेजिंग. Okay, bye. If you want to play Khao Piyo Aish Karo with me, all you have to do is ping me on this WhatsApp number 054-309-1062.

दीवाने तो हम हैं ही इन दो लेजेंड्स के जो कि शेयर करने वाले हैं एक स्टेज. इट्स गोना बी एन अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल इवनिंग. मार्क योर कैलेंडर फॉर 13th November एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. टिकट्स आर अवेलेबल नाउ ऑन प्लैटिनम लिस्ट, सो डोंट वेट, बुक योर्स टुडे. ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द म्यूजिक एंड्स.

अब नैन मिलेंगे ओहो तुम्हारे कैलाश खेर एंड आबिदा परवीन के टू लेजेंडरी आर्टिस्ट वन स्टेज आबिदा परवीन कैलाश खेर 13th नवंबर बुक योर टिकट्स राइट नाउ इवेंट मेड लार्ज विद बिग 106.2 कीप इट लॉक्ड

0: श्याम ये राजो छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपत राव आपते बोल
1: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्रीज आउट देयर बट इट फील्स लाइक 43 बिकॉज जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे आजकल ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, दैट इज व्हाई इट्स 43%, थोड़ी सी और बढ़ेगी यार अभी।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे, आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Made Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स. एंड अभी पता लगा यार, बिहार में ना एक लड़का है, उसने कैंडी क्रश सागा के लेवल्स रिकॉर्ड बना दिए यार. 22,222 लेवल्स क्रॉस कर लिए. एंड हमारे पास भी ना हमेशा बचपन से लेके अभी तक कोई ना कोई एक ऐसी गेम रही है विच वी वर एडिक्टेड टू. हमें बहुत मजे आते थे खेलने में, हमने बहुत एक्सट्रीम लेवल्स क्रॉस करे हैं. फिलहाल भी मैं एक गेम खेल रही हूँ सिमिलर फंक्शनैलिटी लाइक कैंडी क्रश. मैं उसके अभी 777 लेवल पर हूँ. आप मुझे बताओ कि आपने मैक्सिमम लेवल किसी भी गेम का द नंबर कितना क्रॉस किया हुआ है, बताओ मुझे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके 800-1062. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स हैव एवर एवर एवर सरपास्ड इन अ गेम. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and Pythagoras theorem मुझसे आज तक किसी ने पूछी नहीं है. चाहे मैंने अपने पेपर में वो लिखकर नंबर पूरे ले लिए थे, लेकिन जब भी मुझसे कोई फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पूछता है ना, मेरी सिट्टी बिट्टी घुल हो जाती है. उसके लिए और मेरे लिए भी एक्चुअली there is creditmarket.ae. You already know Alfred from insurancemarket.ae. Now Alfred can actually help you compare credit cards, personal loans and in fact mortgages too. Visit karna hai aapko creditmarket.ae par ya fir aap call kar sakte ho 800 Alfred par.
3: He follows my brother.
4: Jab naam bada money follow.
2: So money ke bare mein pata hoga tabhi to money will follow. Keep it locked to Big 106.2.
5: Pure desh ko pagla dunga. Abhi to kuch pesh kiya hai. Suno.
3: Money follows my brother.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो।
3: So Shreya, एक बात सच सच बताना।
4: हाँ।
3: Since you're an anesthetist, आप ज़्यादा पैसे कमाते हो या dentist? Tell me the truth, okay?
4: Actually, yeah, हम ही ज़्यादा कमाते
3: हैं। Yes, बोल दिया भाई। Full points for honesty. You know the reason I've called you is that you are just one step away from winning an all expenses paid trip of a lifetime to Germany.
4: Okay.
3: आखिरी पड़ाव बचा हुआ है anesthetist श्रेया जी आपके और जर्मनी के बीच में. Okay, so आपको एक सवाल का जवाब देना है. Okay, if you do this, then you go to Germany. It's as simple as that. Okay.
4: Okay. Okay.
3: Shreya, are you ready? You have to spell Dusseldorf.
4: Dusseldorf.
3: Yeah, Dusseldorf is a city in Germany.
4: D U S S E L Dorf. D O R F.
3: Shreya.
4: Yeah.
3: एक बात बताऊं?
4: जी.
3: मैं मजाक कर रहा था. अगर आपने गलत जवाब दे दिया होता तब भी आप जर्मनी जा रहे होते, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. माय गॉड. अरे who spells Dusseldorf यार, मतलब your teacher will be so proud of you. I did not care if you know the answer or not. मुझे लग रहा था आप नहीं दे पाओगे, लेकिन Dusseldorf, congratulations, you are going to Germany. In the big check-in.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 AM to 11 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: E11 पर आपको ट्रैफिक मिल जाएगा अराउंड शेख जायद रोड, अल मनारा कॉरिडोर, E44 अलखील रोड पर, देयर आर स्लोअर सेक्शंस अराउंड मैदान, रसल खोर एंड दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, E311 मिर्दिफ के अराउंड इंटरनेशनल सिटी एंड टुवर्ड्स ग्लोबल विलेज, वहां पर आपको काफी हैवी कंजेशन मिल जाएगा. E611 एमिरेट्स रोड पर, अरेबियन ब्रांचेस 3 पर भी ट्रैफिक मिल जाएगा. कहीं और फंसे हो लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
6: नाउ लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटवर्ड एंड स्कोडा, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. विजिट selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me, creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, हमें हमेशा रहते हैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम. और आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी आर के पेज पर, AVNIY AAA R. लेकिन जाने से पहले मैं आपको जरा एक बात बता दूं.
2: तू चाहिए
1: मुझे बताया, मैं चाहिए. लेकिन अगर आप मेरा शो सुन ही रहे हो और उस पे आपको एक ब्रांड न्यू SUV में बैठ के सुनना हो, तो और मजे आ जाएंगे ना यार. Now you can actually lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1999 the rooms per month for a 12-month plan. Visit करना है आपको selfdrive.ae पर, and that's it. You're sorted. TNC apply. कल मिलती हूँ फिर से The Big Mix 1 to 5. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल मानसी। थर्सडे की शाम है, बड़ी लंबी शाम है अंटिल द वीकेंड। आई थिंक ऑल दीज प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड हैं, दे आर रेट्रोग्रेडिंग टुडे। आई डोंट नो व्हाट इज अप विद मी, बट आई थिंक ये सब ग्रहों का ही असर है। फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी हियर अंटिल 9। वी गॉट फैंटास्टिक म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स मूड अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे गाते हैं व्हाइल यू स्टक इन ट्रैफिक वेटिंग फॉर द वीकेंड। द बेस्ट वे व्हाइल यू इन द जैम इज टू जैम विद द कैरियोकी। तो अगर आपके अंदर का भी कुमार सानू, सोनू निगम, उदित नारायण बाहर आने को बेकरार है, एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉन सिंगर्स इन जस्ट अ बिट किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
1: Bollywood.

0: Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: थर्सडे की शाम एंड थर्सडे से फ्राइडे तक का इंतजार इज वेरी वेरी लॉन्ग. द वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर. वी कैन फील इट बट स्टिल नॉट हियर, राइट? फिलहाल व्हाइल यू हेडिंग बैक होम, जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, हम यहाँ पे जाम करते हैं. गाना आए या ना आए, अगर गाने का शौक है तो अपने टैलेंट को बाथरूम तक मत रखो. गिविंग यू प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट टू द वर्ल्ड, बिकॉज कई लोग कैनेडा से सिंगापुर में हमें हमारी ऐप पे भी सुनते हैं. So today happens to be Gauri Khan, Shahrukh Khan's wife's birthday. So unke birthday par I am going to play you a Shahrukh Khan ka hi gana, again from the 90s, very very popular. Let me see how many of you remember this one. Oi hoi. जूही चावला, शाहरुख खान, स्विट्जरलैंड के पहाड़. अगर आपको गाना याद आ गया है, then 800-1062 is the number to dial. We are karaoke king.
1: Karaoke.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Papa John's.
1: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
0: Let me tell you something about business. You never really know how far it can take you. Today it might be a license, tomorrow an office, then suddenly you need more visas, a warehouse, maybe even industrial land. So start somewhere that can grow with you. At Umal Quain Free Trade Zone, you get more than a business license. You get one complete ecosystem to start, operate and scale your business with visa and bank account assistance too. Visit UAQFTZ.com.
2: मैं दीवानी कुछ न जाना मस्त होके गावा लाके बंदे
0: Two legends, one stage, one unforgettable evening. Pantheon presents Borderless Melodies with Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. 13th November at Dubai World Trade Center. Book your tickets now on Platinum List. Brought to life by Hop Events. Creating experiences that stay with you. Official radio partner, Big 106.2. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: 18 to 20 minute delay अगर आप अल मनारा स्ट्रीट पे हैं इस वक्त. उम सुकीम पे भी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा, स्पेशली इफ यूर ऑन उम सुकीम 1 अल मनारा स्ट्रीट. अगेन इट इज अ बिट पैची, हैवी ट्रैफिक शिकायत पर द यूजुअल 55 मिनट का डिले एट द मोमेंट. स्टैंड स्टिल दो नियर दुबई मॉल, शेख मोहम्मद बिन जायद मोरिफ टू मुहिसना. अगेन 47 to 55 मिनट डिले डिपेंडिंग कि आप हैं कहाँ. ट्रैफिक मिलने वाला है अगर आप जद्दाफ के आसपास हैं, हैवी ट्रैफिक नियर फेस्टिवल सिटी करामाउद मेहता. प्लस इफ यू आर ऑन फहीदी, बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है. ट्रैफिक राइट नाउ जुमेरा रोड पर गोइंग टूवर्ड्स जुमेरा बीच. एंड फर्दर अगर आप जा रहे हैं मरीना से JBR, 18 टू 25 मिनट डिले. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
1: Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
0: Big 106.2.
4: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
5: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Karaoke.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Nancy. We are karaokeing. Gaadi mein baithe baithe apna कॉन्सर्ट होस्ट करने का मौका आपको मिलता है और मैं शॉक्ड सरप्राइज्ड हूँ कि ये गाना जो इतना आसान है इतने गलत जवाब क्यों आ रहे हैं।

0: खान, जूही चावला, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां। अगर याद आ गया गाना है कौन सा, 800-1062 इज द नंबर टू डायल। वैसे कारियोकी करने के लिए कार का होना बहुत जरूरी है, पॉइंट है ना। वैसे कार की बात हुई है तो नाउ यू कैन लीज ब्रांड न्यू जेटोर एंड स्कॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट सम वेरी वेरी कूल SUVs from selfdrive.ae and they've got a fantastic offer starting from 1,999 dirhams per month. This is for a 12-month plan. So do visit them, selfdrive.ae it is. Terms and conditions do apply.
1: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. वी आर कैरियोकिंग हियर. जॉइनिंग अस इज शादाब. गुड इवनिंग.
2: Hi, good evening, Mansi. How are you?
1: I am good, sir. I'll be better if you take me off the speaker so that I can listen to your beautiful voice.
2: I will stop the car. More safe and more easy to
1: very
2: run.
1: Nice.
2: Also, yeah?
1: Very, very nice. So, kaisa raha aapka din? How was it?
2: Well, it was hectic today. Unfortunately or fortunately, there was a training in Dubai. I drive all the way from Abu Dhabi morning and then until Ras Al Khaimah going back to Abu Dhabi now.
1: So, you've been karaokeing the whole day. Aaj ka din kuch hai na ajeeb sa. Pata nahi, mera khud ka mood thoda sa off sa hai. For no reason.
2: नहीं, बट शायद क्लाइमेटिक चेंजेस का असर है यार. आई थिंक अवर माइंड इज ट्राइंग टू गो इनटू द विंटर सीजन बट आ नहीं रहा है विंटर.
1: हाँ, मुझे नहीं पता मेरा माइंड कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है. लग नहीं रहा है आज कहीं, ये मुझे 100% पता है. पर मेरा मूड आप अच्छा करोगे अब गाना गा के. ये मेरा फेवरेट गाना है एंड अब हम सुनेंगे शादाब की आवाज में.
2: Karaoke.

0: ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, तुझसे मैं इंतजार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं।
1: देते हैं आशिक सभी, जा मोहब्बत में दे दूंगा मैं। टूट गई, टूट गई, नहीं मेरा मूड अच्छा हो गया। थैंक यू शादा, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच मानसी, इवन यू मेड माय मूड गुड, सो आई विल ड्राइव नाउ वन टाइम।
1: अरे सर, आपने मेरा मूड अच्छा कर दिया। मेरा बचपन से सपना था कि कोई ये मेरे लिए स्विट्जरलैंड में गाए। अब स्विट्जरलैंड में ना सही, रासल खेमा से ही आपने गा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: एटलीस्ट वी ब्रॉट द स्विट्जरलैंड इन यू। थैंक यू सो मच,
1: यू डिड दैट, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ फैंटास्टिक ड्राइव बैक होम। अगर आप भी ये गाना जानते हैं, गाना चाहते हैं, 800-1062 is the number to dial. Karaoke.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ਖਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ
2: Three, keeping you company here. Main hoon Mansi. This is the big thrill. And while you're stuck in the jam, we jam here with the karaoke. The best way to kill time while you're in the traffic.
3: The big thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: And आ गए हैं राजीव. राजीव कह रहे हैं मानसी तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्या हुआ है? मैंने सुंदर लोगों को राजीव नजर सी लग जाती है, शायद मुझे लग गई है. हो राजीव आप? हाँ सॉरी, आपका माइक ही नहीं ऑन किया मैंने.
4: भाई अपने लाखों करोड़ों लिसनर्स का मूड बनाने वालों का आज कैसे, किसने ये
2: कल ना, मैं ना खुद ही को निहारे जा रही थी. मैं करती हाय क्या बनाया है, मतलब
4: पक्का नजर लग गई होगी खुद की आपको.
2: मेरी तो खुद की खुद को क्यों लगेगी, बहुत और लोग भी निहार रहे होंगे ना, मैंने स्टोरियां मत डाली थी कल. कैसे आपका दिन राजीव?
4: दिन तो जबरदस्त, एकदम जबरदस्त. और अभी तो और अच्छा हो गया कि आपसे बात हो रही है.
2: हाय सो स्वीट, मेरा भी अब अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे मूड मेरा अच्छा होता जा रहा है. फिलहाल ये गाना मुझे बहुत पसंद है.
4: क्या बात है,
2: गाया आपने कभी किसी के लिए पहाड़ों पे, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने?
4: कॉलेज में गाया था अपनी सोलमेट के लिए.
2: तो सोलमेट है अभी आपके साथ कि किसी और के सोल के साथ अभी है?
4: घर पे वेट कर रही है.
2: चलो जी, कोई तो है इस दुनिया में जो अपने सोलमेट के साथ है, वरना तो यहाँ तो सबकी सोल्स इधर उधर बिखरी हुई है. फिलहाल राजीव, आई नो यू आर अ ग्रेट सिंगर, सो आई वुड लव टू लिसन टू दिस वन आपकी आवाज में.
3: कारियोकी

0: हाँ जी,
1: तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई कैसे।

0: थैंक यू जी।
1: ऐसा गाओगे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा, मतलब लोग बोलेंगे एप्लीकेशन देना चाहते हैं सोलमेट बनने के लिए, जगह खाली है। तो बहुत कमाल गाया आपने,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, आपने मौका दिया इसके लिए, दिल से धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे अपनी आवाज पेश करने का।
1: आपने इतना अच्छा गाया, मेरी ऑडियंस की गिनती बढ़ाई, तो आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू अनवाइंड एंड रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे, गाने गाओ।
0: Absolutely. Indeed, indeed.
1: Have a great evening, Rajiv. It's always a pleasure to have you on air. Lovely listening to you. Bye.
0: God bless you.
1: God bless you too.
0: You are doing a wonderful job.
1: Thank you so much.
0: Kudos for Mansi.
1: Main roz bolungi mera mood kharab hai.
0: और मैं रोज आकर के गाना गा करके आपका मूड अच्छा करूंगा।
1: सो स्वीट, कहीं कहीं आपका और मेरा सोल ना साथ में जुड़ जाए फिर। आ रही हूँ मैं मूड में, आ रही हूँ, चलो यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय।
0: वेरी गुड। अभी मानसी आ गई है अपने गियर में, टॉप गियर।
1: कमोलिका बन गई है फिर से, चलो यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय
0: बाय।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 6:10
1: 6.2 The Beat of Bollywood

unforgettable evening where two legendary voices come together on one stage. Pantheon aapke liye lekar aaye hain Borderless Melodies featuring the legendary Abida Parveen and Kailash Kher live in concert. Do legends, ek stage aur ek unforgettable musical evening. Mark your calendars, 13th of November it is at the Dubai World Trade Center. Tickets are now available on Platinum List, so don't wait. Bahut jaldi sold out ho jayengi kyunki जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं वेयर यू गेट टू सी आबिदा परवीन जी एंड कैलाश खेर साहब परफॉर्म एक ही स्टेज पर एक साथ. सो बुक योर टिकट्स नाउ. दिस इज हैपनिंग ऑन द 13th ऑफ नवंबर एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ब्रॉट टू यू बाय हॉप इवेंट्स, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस दैट स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द म्यूजिक एंड्स. दिस इवेंट इज मेड लार्ज बाय अस, बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. कांट वेट फॉर 13th ऑफ नवंबर.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: For the very first time in Dubai, join Darshan Chopra for an intimate Zikr night. A quiet sanctuary where old Bollywood melodies, timeless nostalgia and stories drift gently into the evening. Zikr, where music becomes a memory we share. Saturday, 10th October at the Junction, Al Sarkal Avenue. Book your seats now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
0: Missed your morning buzz?
3: So Shreya, एक बात सच सच बताना.
4: हाँ.
3: Since you're an anesthetist, आप ज़्यादा पैसे कमाते हो या dentist? Tell me the truth. Okay.
4: Actually, yeah, हम ही ज़्यादा कमाते
3: हैं. Yes, बोल दिया भाई. Full points for honesty.
5: You know the reason I've called you is that you are just one step away from winning an all expenses paid trip of a lifetime to Germany. सिर्फ आखिरी पड़ाव बचा हुआ है एनेस्थेटिस्ट श्रेया जी आपके और जर्मनी के बीच में. ओके, सो आपको एक सवाल का जवाब देना है. ओके, इफ यू डू दिस देन यू गो टू जर्मनी. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके
4: ओके ओके
5: श्रेया, आर यू रेडी? यू हैव टू स्पेल डुसेलडॉर्फ.
4: डुसेलडॉर्फ,
5: या डुसेलडॉर्फ इज अ सिटी इन जर्मनी.
4: डी यू एस एस ई एल डॉर्फ. डी ओ आर एफ.
5: श्रेया,
4: या
5: एक बात बताऊं?
4: जी,
5: मैं मजाक कर रहा था. अगर आपने गलत जवाब दे दिया होता तब भी आप जर्मनी जा रहे होते, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. माय गॉड, अरे who spells Dusseldorf यार, मतलब योर टीचर विल बी सो प्राउड ऑफ यू. आई डिड नॉट केयर इफ यू नो द आंसर और नॉट, मुझे लग रहा था आप नहीं दे पाओगे, लेकिन Dusseldorf, कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू जर्मनी. In the
4: Thank
5: big check-in.
4: You.
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, मैं हूं मानसी. वी प्लेइंग द 5 second रूल. फिलहाल नदीम आल्सो ऑन द फोन लाइंस विद मी. नदीम, वी प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 second रूल. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है 5 second के अंदर. ऑल द बेस्ट.
0: 5 second रूल.
2: ओह या.
1: थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड यू कैन ईट.
3: वेजिटेबल.
1: कौन से सर? कौन से? मेथी, पालक, ब्रोकली. हो गया टाइम खत्म. 5 second. 5 second फटाफट खेलना है. तीन बॉबी देओल की मूवीज. आपका फेवरेट कौन है फिर?
3: फेवरेट कोई नहीं है, बट आई लाइक शाहरुख खान.
1: ओके, तो तीन शाहरुख खान की मूवीज.
3: जवान.
1: अरे फटाफट खेलने वाला गेम है ये सर. इतना सोच सोच के नहीं, जो दिल में आ रहा है वो जुबान पे आना चाहिए. तीन ऐसी चीजें जो आपको अपने एम्प्लॉइज के बारे में अच्छी नहीं लगती.
3: उनका लेट आना, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना फोन पे. और
1: 5 second हो गए थे, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय सुन रहा है तो उसके काम आ जाए. 5 second का भी खत्म हो चुके थे. Three things that you pick from a hotel room.
3: From a hotel room.
1: Time ही खत्म. कुछ नहीं. Shampoo conditioner भी नहीं उठाते हो आप? हैं?
3: वहीं use करके छोड़ देते हैं, उठाते तो नहीं.
1: देखो ये जिनकी सैलरियां अच्छी होती हैं ना वो ये करते हैं. ये अमीरों की निशानी है. Shampoo conditioner नहीं उठाते हैं.
0: 5 second rule.
1: But I have to say Nadeem, बहुत खराब. बहुत खराब खेला आपने. बट इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू. बट जेन्युइनली यू डोंट पिक अप द शैम्पू कंडीशनर फ्रॉम द होटल रूम?
3: कभी नहीं किया.
1: मुझे ना ये करना छोड़ना चाहिए. यही एक ऐसी आदत है जो मुझे अमीर बनने से रोक रही है. शैम्पू कंडीशनर, कॉफी के सैशे, चाय के सैशे. ग्रीन टी मैं पीती नहीं हूँ, फिर भी मैं उठा लेती हूँ कि कभी काम आएगी. थैंक यू नदीम, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय. ये 5 second रूल, इट साउंड्स इजी, लाइक आई हैव सेड, इतना आसान है नहीं. अगर आपने खेलना है 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Keeping you company, I'm Mansi. Joining us is Farhan. Hi, Farhan.
2: Hi, Mansi.
1: Wow.
2: Thanks for picking up my call.
1: अरे thanks for calling me. आपका और मेरा हाल सेम है. आज थोड़ा सा मूड हमारा ढीला ढीला चल रहा है.
2: सेम क्योंकि वापसी का टाइम है ना.
1: तो क्या आपको घर जाना अच्छा नहीं लगता?
2: नहीं, थक के घर जाना अच्छा नहीं लगता.
1: घर तो हर बंदा थक के जाता है सर. नाचते गाते तो सिर्फ फ्राइडे को ही जाते हैं. आपका मुझे माहौल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. ये कहानी कहीं आपकी तो नहीं? एक लेडी फ्रॉम थाईलैंड वो ऑल द वे कानपुर गई टू सरप्राइज द मैन जो वो सोच रही थी कि उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में है. जब वो वहाँ पहुंची उसे पता चला कि एक बीवी तीन बच्चे हैं. कहीं ये तुम तो नहीं फरहान?
2: नहीं, काश बोल सकते हूँ लेकिन नहीं.
1: क्या हो? मैं कह रही हूँ गड़बड़ है यहाँ पे कुछ. करे काश हो सकता. हाय रब्बा.
2: वो कहते हैं ना कि ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है.
1: मैं कह रही हूँ ये दुनिया बिगड़ी हुई है. आप सुधरे हुए रहो. आजकल सुधरे हुए लोगों की डिमांड है.
2: चलें आपकी एडवाइस को फॉलो करेंगे.
1: मेरी एडवाइस को आप बिल्कुल फॉलो करें क्योंकि इस आदमी का आगे हुआ क्या होगा कि बीवी ने जो किया होगा वो किया होगा. जो लड़की बेचारी इतना पैसा खर्च करके थाईलैंड से कानपुर आई थी उसने क्या किया होगा ये थोड़ी ना बताते हैं. फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तीन गाने जिनमें इश्क आता है.
2: Oh my God, 5 seconds are already over, right?
1: I know. कितने सारे गाने इश्क हुआ, कैसे हुआ, ये इश्क इश्क है, बहुत सारे. तीन चीजें जो आपको अपने काम के बारे में, अपने जॉब के बारे में ना पसंद है.
2: ज्यादातर दिल
1: है. दिल
2: ये तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है.
1: दिल की क्या बातें कर रहे थे आप जॉब पर?
2: नहीं, मैं ज्यादातर दिल करता है कि ना काम करें.
1: वो तो सभी का करता है सर, पर दिमाग कहता है ना कि जीने के लिए काम करना जरूरी है.
2: काम तो करना पड़ता है जी.
1: तीन शाहरुख खान की फिल्म्स बता दीजिए.
2: दिल तो पागल है, रईस और पठान.
1: ऑलमोस्ट देयर. 3 things दैट आर ब्लैक.
2: कार्स, क्लोथ, नाइट.
1: Night is not a thing. 5 सेकंड हो गए थे. अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं अगर कोई लड़की करे तो आप इम्प्रेस हो जाते हो.
2: Smile, positive vibes, और intelligent humor.
1: तो ये मिल गया है कि ढूंढ रहे हो? बीबी के बहुत सारा मिला हुआ है.
2: नहीं, ढूंढ रहा हूँ.
1: ये तो जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दिया है ना सर, मुझे लगता है खोज लंबी रहेगी क्योंकि जो 2-4 आपको पसंद कर रही होंगी वो भी भाग जाएंगी.
2: उनको थोड़ी पता होगा.
1: यू नेवर नो कि आपकी आवाज कहाँ तक पहुँच रही है. किसी से कर रहे हो आजकल बातें?
2: हाँ, ये तो है. नहीं, आजकल तो नहीं कर रहे.
1: नहीं कर रहे? क्यों?
2: नहीं, शरीफ हूँ.
1: कोई शरीफ नहीं हो. आपके पहले स्टेटमेंट नहीं, आपकी शराफत का बयां कर दिया. गेम बहुत खराब खेला लेकिन मजा बहुत आया. फरहान, आपसे बात करके हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू.
1: सेम हियर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06.
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Almost done with Thursday. Weekend aa hi gaya hai. We're making plans for a poetic and a magical weekend. You know, sometimes you just want to sit back, quiet the noise and let great music speak to you. And ye hone wala hai is Saturday ko, 10th of October ko. Zikr aapke liye lekar aaye hain Darshan Chopra, an intimate evening with timeless Bollywood nostalgia live at the Junction, an evening full of stories, soul and unforgettable memories. Once again, reminding you, tickets are available platinum list pe, so go grab yours. It's going to be a beautiful, beautiful evening. Zikr lekar aa rahe hain Darshan Chopra ko for the very first time in Dubai, and he is fantastic. The way wo apne verses add karte hain क्लासिक बॉलीवुड मेलोडीज में, आई थिंक दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस. फिलहाल दिस इवेंट इज मेड लार्ज बाय अस बिग 106.2. दैट मींस गिविंग यू चांस टू विन कपल इनवाइट्स. बहुत ही सिंपल है, हम अच्छे गानों की, अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेल मी कि ये जो गाना आप सुनेंगे अभी

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 34 degrees, feels like 42, 45 because humidity bahut hai. Filhal lo jayega around 31.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We're making a beautiful plan for this Saturday. You and I with some beautiful timeless melodies and Darshan Chopra ki awaaz. Darshan Chopra is performing for the very first time in Dubai. Zikr aapke liye lekar aaye hain Darshan Chopra ko, jinka zikr social media pe aajkal kaafi hai. And this is happening at the Junction and tickets are available now. Go and get yours. Platinum list se yahan pe aapke paas couple tickets jeetne ka mauka tha because this event is made large by us, Big 106.2. Joining me is Chinmay, jinse maine pucha ki aap sher o shayari ka, poetry ka, mehfil ka shauk rakhte hain. To kehte hain kaun hai jo nahi rakhta hai. Main bol rahi thi sir bahut hain. Acha shauk bhi na bahut kam logon ko hota hai.
2: Raj Shahi Royal, sorry to interrupt.
1: No, you got it right. Raj Shahi Royal Shauk. शौक मेरे और आपके रॉयल है. आई होप हमारा बैंक बैलेंस भी एक दिन हो जाएगा जैसे शौक वैसा बैंक बैलेंस. फिलहाल सैटरडे का प्लान कुछ बनाया हुआ था?
2: सच तो नहीं, सिर्फ बोस्टिंग हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा तो, बट ठीक है, नहीं है सच कुछ प्लान नहीं है.
1: ओके, सो नाउ वी आर मेकिंग अ प्लान. आई प्लेड योर गाना हियर, यू हैड टू टेल मी कि इस गाने के पीछे आवाज किसकी थी.
2: द वन एंड ओनली, मतलब सभी जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता, आतिफ असलम.
1: Absolutely, आतिफ असलम it is. And ऐसे ही कई गाने हम सुनेंगे दर्शन चोपड़ा का वर्जन this Saturday. Congratulations, Chinmay. You're walking away with a couple tickets to enjoy this intimate, beautiful, soulful evening. तो Chinmay, आप तो शायरी करते हैं, आपको अपनी गजल मिल चुकी है?
2: नहीं नहीं, दोस्तों के साथ कोई भी जो भी मिलेगा उसके साथ चले जाएंगे.
1: अच्छा, मतलब अभी तक आपको अपनी गजल नहीं मिली है?
2: नहीं,
1: ऐसी महफिल्स में यू नो लाइक माइंडेड पीपल यू माइट फाइंड समवन एंड द माहौल देयर इज वेरी रोमांटिक, सो यू नेवर नो. बट डोंट टेल मी वरना मैं बहुत छेड़ूंगी आपको वहां पे. पहले तो ऐसी सब महफिल्स में ना,
2: फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर.
1: या आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल इन सच महफिल्स बिकॉज़ इफ आई डू है द दे विल थ्रो मी आउट, सो आई हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल. बट आई विल सी यू देयर. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड कांग्रेचुलेशंस.
2: एब्सोल्युटली,
1: बाय चिनमय.
2: यू टू. थैंक यू सो मच मानसी, टेक केयर.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
1: Mugambo, खुश हुआ।
2: तो आमिर, मैंने बोला आमिर खान, कहते नहीं आमिर जान। तो कितनों की जान है आप?
3: मॉम की जान।
2: ये देखो, ये जो इन्होंने एकदम संभाला है ना, घुमा के, बहुत बढ़िया करते। क्या है आप आमिर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट। 3 फ्रूट्स विद द लेटर ए।
3: एप्पल।
2: और अरे अरे अरे अरे अरे, नॉट वेरी गुड विद फ्रूट्स आल्सो। 3 चीजें जो पनीर से बनती हैं।
3: पालक पनीर।
2: और ओए होए, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा आमिर खान, ये नहीं हो पाएगा आपसे।
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. No rush, no noise, just soul soothing music on a moonlit ride. This is the Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
1: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.